parte si scritto sotto il Napoli in capitale. Se si fa piaccia, vuole stare le condizioni piaccia, che le do a questo scritto sotto il Napoli. E amare che Hujur sallallahu sallam che ha amare Hazrat Bilal, Hazrat Bilal, Hazrat Bilal Sayyid Nabi. Tab, unki mangni ke andar gaye the. तो अब सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह, सरकार बोले आप क्या तो बड़ा प्यारा बाजा। तो अब सरकार बोलते कि आपको बजाते आता है बिलाल को बुला के, बेशक बोले बिलाल, बिलाल बोलते मेरे को बेशक बजा जाते हैं। तो बोले कैसे बजाते हैं, तो बोले क्या बोले क्या बोलता है फिर। तो फिर बाजा आपने आप सरकार ने बाजा बजा,